प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग जलंधर। अच्छा मैं ना सोच ही रही सी कि अगली तुहाड़े नाल कीड़ी गल शेयर करा, नाल ही मैंने एक चुटकला याद आ गया। जापान च ना दो भरा रहिंदे सी, एक दा नाम सी जो ते दूजे दा नाम सी सो। एक भरा दा नाम जो सी, दूजे भरा दा नाम सो सी। ते एक रात जो नूं घर च भूत दिखाई दिता। जो डर गया ते सो नूं आवाज़ मारी। ज्यों ही सो नूं भूत दिखाई दिता, सो उत्थे ही मर गया। बस उसे दिन तो एक कहावत है बड़ी मशहूर है जिहड़ी कि असीं सारे ही सुनदे हाँ, जो डर गया सो मर गया। असीं काफ़ी बारी एक कहावत सुनीए, लो जी अज इस कहावत का जिहड़ा सच है ना वो मैं तुहाडे सारिआं दे नाल सांझा कर दिता है।

0: फार्मर को समझ आना, स्पेशली जो डेयरी का काम कर रहे हैं, इवन कोई क्रॉप्स में भी, जो भी सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, बट इकोनॉमिक्स का बहुत ही बड़ा रोल है, लाइक बहुत ज्यादा कह लो कि महत्वपूर्ण रोल है डेयरी का, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स समझेंगे, अपनी कॉस्टिंग करेंगे, जैसे उत्पादन लागत कितनी है सबसे पहले, तो हम जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट जिसको बोलते हैं कि कितना फीड पे, फॉडर पे, मेडिसिन पे, यू नो शेड पे कितना खर्चा हुआ है, फिर उसके बाद में जिसकी कितना आपको उसमें लाभ होता है, कितना आपका प्रॉफिट मार्जिन है, लाइक एक फार्मर को समझना पड़ता है कितना प्रॉफिट मार्जिन पे हम काम करते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास बहुत सारे फार्मर्स आते हैं ट्रेनिंग्स के लिए भी, बट नॉर्मली जब हम फार्मर से पूछते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, तो उनको ये नॉलेज नहीं होती है. सो डेयरी इकोनॉमिक्स फार्मर्स की हेल्प इस तरह से करता है ताकि उनको अपने रिकॉर्ड्स बनाने आ जाएं, जो फार्म के रिकॉर्ड्स हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन निकालने आ जाएं. ज्यादातर फार्मर्स हमने देखा है कि वो एक, जिसको हम बोलते हैं ना, कॉस्ट और रेवेन्यू उतना ही होता है, वो ब्रेक इवन लेवल पे होते हैं, अगर हम उसको इकोनॉमिक्स में ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं. सो कोई भी जैसे होता है ना कि काम तभी सफल होता है कि अगर उसमें प्रॉफिटेबिलिटी हो, तो डेयरी इकोनॉमिक्स हेल्प करता है जिस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं, आपको आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए रिसोर्स को, जैसे जो जितने भी संसाधन है उसको उपयोग कैसे करना है प्रॉपरली, ऑप्टिमली, तो डेयरी इकोनॉमिक्स इसलिए उनको इस लिए मतलब हेल्प करता है.
1: जी मैम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, क्योंकि कोई भी हम बिजनेस करते हैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन सबसे पहले ही देखते हैं, और प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, जितनी भी आपने चीजें एक्सप्लेन की हैं. मैम अगर हम देखें पंजाब में या कहीं भी डेयरी फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए, आप कौन कौन सी ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजीज को सबसे पहले ज्यादा इफेक्टिव मानते हैं, उन्हें किस डायरेक्शन में और किस तरह काम करना चाहिए?
0: देखिए बहुत सारी लाइक स्ट्रेटजीज अलग अलग तरह के फार्मर्स अपनाते हैं. जो मुख्य स्ट्रेटजीज हैं वो, जैसे सबसे पहले तो अगर आप डेयरी के कारोबार में हैं तो बेहतर नस्ल, यू नो, के बेहतर नस्ल के पशु लेने चाहिए.
1: जी.

0: अगर आपका ब्रीड बढ़िया है, जेनेटिक्स बढ़िया है, तो ही आपको आगे जाके जैसे होता है ना, लीटर पर लीटर में आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। फिर सेकेंडली संतुलित चारा होना, वो होना चाहिए, जैसे प्रॉपर फीड मैनेजमेंट होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, जो भी जैसे पोषक तत्व होते हैं दूध में वो ज्यादा होने चाहिए, चाहे वो ग्रीन फॉडर है, बरसीम है, मेज साइलेज है, न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। फिर थर्डली हम कहेंगे कि अगर फार्मर्स आर वेल अवेयर नाउडेज, अगर वो FPOs में ऑपरेट करते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, समूह बनाकर काम करते हैं, FPOs रजिस्टर हो जाते हैं नबार्ड से भी और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो छोटे किसान जो है अगर मिलकर लाइक अधिक दूध बेच सकते हैं। अगर वैसे किसी के पास 50 लीटर है, 100 लीटर है, अगर सब मिलके 10-20 फार्मर, दे कैन बिकम यू नो दे कैन मेक एन FPO। उसके बाद क्लीनलीनेस और हाइजीन का, नियमित स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे दूध की गुणवत्ता बेहतर करनी चाहिए, उससे अगर आप बैक्टीरियल काउंट कम होएगा, अगर आप क्लीनलीनेस का ध्यान रखेंगे तो आप कस्टमर से ज्यादा प्राइस भी डिमांड कर सकते हैं, और अगर आपका दूध बढ़िया है तो कस्टमर भी ज्यादा प्राइस देने को तैयार हो जाता है। तो इससे और एक आखिरी है कि अगर आप सीधी बिक्री करें, डायरेक्ट सेलिंग करें, मतलब बीच में अगर आप नॉर्मल खुद सेल करते हैं तो 40 रुपए का मतलब दे रहे हैं, अगर आप यू नो किसी कोऑपरेटिव को दे रहे हैं, और अगर आप बिक्री सीधी करते हैं, सीधा कंज्यूमर डायरेक्ट करते हैं, तो आप खुद ही 50-60-70 रुपए लीटर, डिपेंड की थोड़ी क्वालिटी यू नो दूध की कितनी है, बैक्टीरियल काउंट कितना है और कितना फैट SNF है।
1: जी जी मैम, तो मतलब जो सारी चीजें हैं वो मेन क्वालिटी पे भी डिपेंड करती है कि जितनी अच्छी क्वालिटी होगी वो उतने प्राइस बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल, सब कुछ घूम फिर कर क्वालिटी सही आता है दूध में।
1: जी मैम, श्रुति मैम, जैसे अगर फार्मर सिर्फ दूध बेचने के बजाय उससे पनीर, दही, घी या फ्लेवर्ड मिल्क जैसे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केटिंग करे, तो उनकी इनकम में कितना फर्क आ सकता है? ये तो अभी हमने दूध की बात की थी सिर्फ।
0: देखिए, अगर फार्मर अगर आप सीधा अगर कच्चा दूध जैसे होता है ना क्वांटिटी रॉ बेचते हैं, तो 30 से 40 लीटर, जैसे 40 लीटर बेस प्राइस मान के चले पर लीटर मिलता है। फिर अगर हम कहें कि अगर हम दही, पनीर, घी, तो जैसे दही है वो कम से कम 60 से 80 रुपए किलो मिलेगा, तो 30-40% फायदा होता है दही में। अगर पनीर बनाते हैं जैसे 6 लीटर से 1 किलो पनीर निकला, तो जो पनीर है वो कम से कम 400 रुपए, अच्छा पनीर 400 रुपए किलो तो मिलेगा ही मिलेगा, तो पनीर में भी 40-50-60% का फायदा हो सकता है। और अगर घी है, अब घी भी बहुत तरह का है, घी आपका कौन सी, साहिवाल घी है, A2 घी है, या बफलो काव का घी है, या घी में तो फायदा 200% तक जा सकता है।
1: जी जी जी जी, तो हम कह सकते हैं कि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा बेनिफिट है, अगर
0: बहुत ज्यादा बेनिफिट है, बहुत जी। बस अभी आप FSSAI रजिस्ट्रेशन लें और छोटे स्तर से शुरू करें, और इसमें बहुत बेनिफिट है
1: जी। तो श्रुति मैम, आजकल डिजिटल जमाने में ऑनलाइन सेलिंग हो गया, या ई कॉमर्स और सोशल मीडिया का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है जैसे हम देख रहे हैं, तो डेयरी बिजनेस के लिए प्लेटफॉर्म किस तरह नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं?
0: जी, मौके भी बहुत हैं, स्कोप भी बहुत है आजकल, क्योंकि अगर हम देखें कि सीधा ग्राहक तक पहुंच सकते हैं हम बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया की बात करते हैं, आप सीधा सीधा ग्राहक तक आज के दौर में पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट जिसको बना ले या वेबसाइट बना ले अपनी, तो बीच में मिडल मैन भी अवॉइड हो जाता है। फिर होम डिलीवरी भी कर सकते हैं, आप अपनी ऐप बनवा सकते हैं, और फ्रेश मिल्क किसको नहीं पसंद, फ्रेश इवन सिटीज में तो लोग प्रीमियम प्राइजेस भी देते हैं। उसके बाद में जैसे पैक्ड डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे पनीर, दही, इसको अगर प्रॉपर यू नो इसकी ब्रांडिंग की जाए या इसकी प्रॉपर पैकिंग की जाए, तो और कोल्ड चेन मेंटेन की जाए जैसे, तो इसकी बहुत प्रीमियम प्राइस मिलती है। प्लस आजकल ब्रांडिंग का जमाना है, आपको पता है सब लोग रील देखते हैं, डिजिटल लिटरेट है, डिजिटल लिटरेसी पहले तो बढ़ानी चाहिए, डिजिटल लिटरेसी सबको, मतलब कुछ कोई भी कोई बिजनेस कर रहा है उसको अपने आप को डिजिटली लिटरेट करना चाहिए।
1: बिल्कुल, वो ऑनलाइन दिखता है वो

0: जी यही है. और एंड में ब्रांडिंग इज वेरी लाइक दूध का कोई ब्रांड डेवलप कर सकते हैं फार्मर, जैसे पंजाब फ्रेश डेयरी, हेल्दी फार्मर डेयरी, कुछ भी. यू नो स्टोरीज आजकल बहुत चलती हैं, वायरल हो जाते हैं लोग. तो ये सब चीजें जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं ये हेल्प ही करती हैं फार्मर अगर डिजिटली लिटरेट हो जाए तो.
1: जी तो मैम जैसे छोटे और मार्जिनल जो डेयरी फार्मर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट की कौन कौन सी ऐसी स्कीम, सब्सिडीज और लोकल फैसिलिटीज हैं जिससे उनको ज्यादा और बेनिफिट मिले और उनका सही तरीके से फायदा या बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं?
0: गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो इंडिया में या पंजाब में अभी चल रही हैं, जैसे सब्सिडी स्कीम्स भी हैं. जैसे एक तो पीएम किसान है जो तो इनकम सपोर्ट ही देता है जो 6,000 पर ईयर फार्मर्स को मिल रही है. फिर उसके बाद में डेयरी विकास योजना है जो फार्मर्स को जो उपकरण होते हैं जो सब्सिडी 25-50% सब्सिडी मिल जाती है, जैसे गोबर गैस, दूध टेस्टिंग के उपकरण पर. देन थर्डली एक जैसे लाइफ स्टॉक पशुधन सहायता योजना है, इसमें क्या है पशु जो खरीद की सहायता एनिमल परचेज करने के लिए हमारे को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है गवर्नमेंट से.
1: जी
0: फिर पशु बीमा योजना है जिससे हम इंश्योरेंस कराते हैं, इससे कंपनसेशन मिल जाती है इफ बाई चांस एनिमल डाई या नो अनटाइमली, या इससे सेफ्टी हो जाती है एक फार्मर को और एनिमल्स को भी. फिर नाबार्ड की लोन स्कीम्स हैं जिससे 5-10% तक, मतलब 5% के इंटरेस्ट पे वेरी लेस परसेंट पे डेयरी में जो शेड बनाना है या कोई और डेयरी का कुछ फीजर लेना या वैल्यू एडिशन की कोई मशीनें बड़ी लेनी है तो नाबार्ड लोन देते हैं. देन वुमेन के लिए महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी योजनाएं हैं, 50% तक सब्सिडी मिल जाती है. एक स्पेशल सब्सिडीज होती हैं वुमेन के लिए अगर, और महिलाओं का डेयरी में तो बहुत बड़ा योगदान है. तो महिलाएं अगर कोई सामूहिक काम करते हैं या अपनी भी डेयरी या कुछ उद्यम शुरू करते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा सब्सिडी भी मिलती है.
1: जी मैम तो हमारी गवर्नमेंट ने काफी सारी फैसिलिटीज और सब्सिडीज हो गई स्कीम्स किसानों के लिए निकाली हुई है.
0: जी
1: जी तो मैम डेयरी कोऑपरेटिव या प्राइवेट डेयरी कंपनीज के साथ अगर जुड़ने से जो फार्मर्स हैं उनको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है और अगर हम बात करें कि इस प्रोसेस में उन्हें किन किन चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है?
0: देखिए डेयरी कोऑपरेटिव के बहुत फायदे हैं और बहुत चुनौतियां भी हैं. फायदे अगर हम देखें कोऑपरेटिव से ही जुड़े होते हैं तो उनको क्या होता है कि एक जैसी कीमत मिलती है, कंसिस्टेंट प्राइस मिलता है, ये नहीं कि रेट कभी मिला कभी नहीं मिला, तो सभी यू नो कंसिस्टेंट प्राइजेस मिलेगा. तो ये एक फायदा है कोऑपरेटिव से जुड़ने का. तो उसके बाद में उनकी डिमांड जो कह लो स्थिर है, जो कंसिस्टेंट डिमांड भी है अगर प्राइस कंसिस्टेंट है तो, जो दूध हमेशा खरीद. फिर उसके बाद में जांच जो होती है वो लोग आपको फ्री करके देते हैं, उससे आपको पता चलता है कि क्वालिटी चेकिंग की आपकी दूध की क्वालिटी क्या है. उसके बाद में बल्क बाइंग जो होती है, जो अगर जो ये जो कोऑपरेटिव होते हैं ये इसमें भी हेल्प करते हैं कि अगर आपको फीड मेडिसिन वैक्सीनेशन के लिए ये जो ये बल्क बाइंग करते हैं और ये आपको कई कई कोऑपरेटिव हेल्प भी करते हैं.
1: जी
0: और बहुत सारे कोऑपरेटिव जो हैं वो वेटनरी और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वेटनरी ट्रेनिंग, जो फ्री ट्रेनिंग ये सब भी प्रोवाइड करते हैं. तो ये सब तो हुए कोऑपरेटिव्स के जो फायदे. बट कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि आपको नियमित जमा करने पड़ता है कि दूध जो है टाइम पर ही देना पड़ता है. आप थोड़ा टाइम नहीं ला सकते कि जब उनका कलेक्शन के टाइम पे ही आपको मतलब यू नो रेगुलर देना पड़ेगा. देन उसके बाद अगर करो कि जो उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, आपको अपनी जो दूध की या पशु की क्लीनलीनेस उसी हिसाब से रखनी पड़ती है कि आपकी क्वालिटी या बैक्टीरियल काउंट ये सब स्ट्रिक्ट होते हैं ये कोऑपरेटिव. फिर एक कुछ थोड़ी बहुत ही कुछ होती है मेंबरशिप फीस होती है ईयरली, वो आपको लेनी पड़ती है और कभी कभी पेमेंट 15-20 दिन की डिले भी हो जाती है.
1: जी
0: तो ये कुछ चुनौतियां हैं.
1: मैम आपने टाइम का और जो क्वालिटी का

0: जिक्र की है, तो इसके साथ क्वांटिटी भी मैटर करती है कि अगर उन्होंने फिक्स क्वांटिटी वो कर दी होती है फिक्स, तो उतना ही दूध सबमिट करवाना है?
1: नहीं नहीं आप ज्यादा भी कर सकते हैं दूध सबमिट.
0: ओके ओके.
1: अपने प्रोडक्शन के हिसाब से,
0: प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग.
1: और ऐसे ही जैसे अभी मॉनसून आ गया या कुछ हो गया तो फिर दूध की क्वांटिटी कम भी हो जाती है. जब पशुओं को कोई बीमारी हो गई या कुछ, या कुछ तो, या गर्मियों में थोड़ी दिक्कत आती है.
0: जी जी मैम. तो इससे पहले अभी हमने काफी जो इस बिजनेस में बेनिफिट है उसके बारे में बात की है, तो अब बात करते हैं कि डेयरी बिजनेस में रिस्क मैनेजमेंट और पशुओं का इंश्योरेंस और प्रॉपर अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो वो कितनी इम्पोर्टेंट है? क्या ये बिजनेस को लॉन्ग टर्म में सिक्योर बनाने में मदद कर सकती है?
1: जी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. इंश्योरेंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. अगर कोई भी गाय या भैंस लाइक अचानक से मृत्यु हो जाती है किसी भी किसी भी जानवर की हमारे, तो 90,000 तक का मुआवजा मिल जाता है इंश्योरेंस में. बट कोई बीमारी का इलाज करवाना हो, ट्रीटमेंट कॉस्ट, जिसको हम वित्तीय सहायता मतलब ये भी मिल जाती है. उसके बाद में आप देखिए, अगर आपने इंश्योरेंस करवाई है अपने एनिमल की तो आपको मेंटल पीस भी मिलता है कि मेरा एक जो हमारा जो एक कैटल है या बफलो है ये इंश्योर्ड है. उसके बाद में फाइनेंशियल प्लानिंग भी उससे आप कर सकते हो अगर आपका इंश्योरेंस है. जैसे कि जैसे आप कहें कि मंथली जो आपके खर्चे हैं रिकॉर्ड, ये सब आपको करवाना पड़ता है अगर आपने इंश्योरेंस करानी कि आपका मंथली चारे पे, दवा पे या लेबर पे कितना खर्चा आया, या मंथली इनकम कितनी आई. फिर आप एक इमरजेंसी फंड भी बनाते हैं, और एक आप एक कुछ लोग जैसे अगले साल के लिए एक्सपेंशन प्लानिंग जिसको हम बोलते हैं, अगले साल की योजना भी बनाते हैं कि मे बी नेक्स्ट ईयर से हम वैल्यू एडिशन शुरू करेंगे.
0: जी जी मैम, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने. जितनी भी चीजें अभी तक आपने हमें बताई हैं, उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे लिसनर्स हैं जो ये शुरू करने वाले हैं बिजनेस या कर रहे हैं उनको बहुत इससे फायदा होगा. आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर पंजाब के डेयरी सेक्टर को आने वाले सालों में और ज्यादा प्रॉफिटेबल और कॉम्पिटिटिव बनाना हो तो आपके हिसाब से किन किन एरिया में किस तरह पहले से ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं?
1: देखिए पंजाब के डेयरी सेक्टर को अगर हमें प्रॉफिटेबल बनाना है, पहले तो हमारे को जैसे जो हमारी क्वालिटी है, हमें जो क्वालिटी पे ज्यादा गुणवत्ता पे जोर देना पड़ेगा ताकि हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या जो हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो मानदंड होते हैं हमारे को उसके ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा. सो दैट पंजाब जो है एक इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड का दूध बना सके और हम एक्सपोर्ट में भी हिस्सेदारी कर सके.
0: जी.
1: फिर उसके बाद में हमारे को अपने जो यूथ है, जो महिलाएं हैं, इनको और ज्यादा टेक सेवी या कह लो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या वैल्यू एडिशन की ट्रेनिंग देनी चाहिए जो हमारे गढ़वासु में हमारी आज ही शुरू हुई है वैल्यू एडिशन की ट्रेनिंग, और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इस बारी. हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं बट हम उससे डबल एप्लीकेशन लाई हैं 5 दिन की ट्रेनिंग. सो ऐसी ट्रेनिंग्स का बहुत फायदा होता है. नॉर्मली अगर आप एक लिक्विड दूध बेचते हैं या आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जैसे चीज, मोज़रेला या दूध, दही, आइसक्रीम, तो ये सब चीजों की ट्रेनिंग लेना भी बहुत जरूरी है.
0: जी.
1: फिर उसके बाद आप किसी भी जो FPOs को अगर आप डेवलप करते हैं या रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं, इसका भी बहुत फायदा होता है आगे जाके. और गवर्नमेंट की सपोर्ट जो है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी फार्मर्स को पता करनी चाहिए, और ट्रेनिंग या एजुकेशन जो है वो प्रॉपर लेनी चाहिए मॉडर्न टेक्निक्स की.
0: जी जी.
1: तो इन सब चीजों को अगर आप एक पोर्टफोलियो बना के चलेंगे तो डेयरी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज है.
0: जी श्रुति मैम, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल के इस टॉपिक पर इतनी वैल्यूएबल और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है.
1: थैंक यू शाहिद.
0: थैंक यू सो मच मैम.

हो चुकी है जी। बारिश होवे तो फिर तो मैं क्या जी प्या घर दे विच पए प्याज ते पकौड़ियां दा फर्ज बन जांदा कि गरम गरम तेल दे विच डुबकी मारन दे लई तैयार हो जान जरा। सो बारिश जिद्दा ही स्टार्ट हुंदी ना मन करता है कुछ इदा दा क्रंची क्रंची भुरभुरा जिहा खाण दा ते नाल मैं क्या जी एक कप गरम गरम चाह मिल जाए फिर तो स्वाद ही आ जांदा इस मौसम दा। सो तुसी भी लो इस मौसम दे नज़ारे यानी कि बारिश दे जड़े नज़ारे ने लो ते नाल ही नाल तुहाडे लई जड़े गाने ने ओ भी रुकनगे नहीं। अगला गाना आ रहा फ्रॉम द मूवी भागी तो ते तुसी करो जे इंजॉय। इदां ही वधिया वधिया गाने लई प्ले करके रखो 102.7 FM रेनबो दिल से दिल तक।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: मॉर्निंग, कौन बोल रहे हो जी? तुसी
1: साक्षी मैडम जी, बिट्टू बोल रहा जी, रूम दर्शन बैकयार्ड मंगू स्टेशन जनरल मैडम जी।
0: जी बिट्टू जी, बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा प्रोग्राम दे।
1: थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया प्रोग्राम पेश कर रहे हो मैडम
0: जी। बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। होर की हाल चाल ने?
1: बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, तुहाडे कोल नाल आनंद लै रहे हां जी पूरा।
0: ठीक है जी, तो फिर पकौड़े पकौड़े बना ले?
1: नहीं जी, समोसे मंगाए जी।
0: समोसे मंगाए है, ठीक है। ठीक है जी, बहुत ही वधिया, बहुत ही वधिया। चार समोसे चल रहे फिर अज?
1: हां जी, हां जी मैडम जी, मैं प्रोग्राम सुन रहे हां।
0: ठीक है,
1: कॉल लगा रहे जंग तक भी, मैं भी कॉल लगा रहा, मेरी लग गई।
0: अच्छा जी, तो केड़े गीत दी फरमाइश लेके आए हो अज?
1: हां जी मैडम, गुरदास मान दा सुनाओ, फेल पास सुनाओ।
0: ठीक है जी, फेल ते पास गुरदास मान जी दी आवाज दे विच गीत जेड़ा असी कर रहे हां जी प्ले।

0: चुनी लेके अटक गई हिक ते दूरों जदों वेखे आए माही मैनू टिक के सिर तो चुनी लेके
1: वंस अगेन वेलकम बैक है जी ट्यूनिंग किया है तुसी 102.7 FM रेनबो मैं हाँ जी थोड़ी अपनी साक्षी थोड़े नाल ते प्रोग्राम होम स्वीट होम तुसी कर रहे हो जी इंजॉय वैल चुन्नी लपेटन का मौसम जड़ा है हाँ जी वो चल रहा है क्योंकि आप मूँह सिर लपेट के ही गर्मी के मौसम के

नमस्कार दोस्तों, तुसी सुन रहे हो अपना फेवरेट वाला प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़ की शुरुआत जिहड़ी है वह हो चुकी है। तो FM रेनबो जलंधर 102.7 मेगाहर्ट्ज़ के नाल नाल असी 103.6 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी अमृतसर के सरोतियां का भी निघा स्वागत करते हैं। सो अमृतसर के सरोते जड़े ने सानू 1 to 3 जड़ा है FM रेनबो जलंधर साडा प्रोग्राम सुन सकते हैं मिड डे मेलोडीज़। तो उस तो बाद साडा अगला प्रोग्राम दिलराज शायर सुनेंगे ते तुहाडा ते मेरा साथ 1 to 2 दा प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़ च रहेगा। ते मैं हाँ जी तुहाडी अपनी दोस्त साक्षी तुहाडे नाल। ते अज जिहड़ा मौसम हैगा है बहुत ज़्यादा सुहाना हो चुकिया है। बारिश जिहड़ी है हल्की हल्की हुई, उस तो बाद बहुत ज़्यादा तेज़ भी हुई, ते हुण बारिश जिहड़ी है रुक चुकी है, पर मौसम जिहड़ा है बहुत ही वधिया है। ते इस ठंडे ठंडे मौसम दे विच चाह दी चुस्कियां जिहड़ियां असी सारे ही इंजॉय कर रहे हैं, ते उहदे नाल ही नाल सदाबहार जिहड़े गीत हुंदे ने उहनां दा सुमेल इस टाइम मिड डे विच मिड डे मेलोडीज़ दे विच बहुत ही खूबसूरत लगता है अपने आप दे विच। ते इस खूबसूरत जे सफ़र दी जिहड़ी है अज शुरुआत करदे हैं आशा जी ते किशोर कुमार दी आवाज़ दे विच। गीत आ रहा जी अपराध मूवी जो कि 1972 दे विच रिलीज़ हुई सी, उहदा ही गाणा तुहाडे लई प्ले कर रही हाँ। इदां ही बने रहो 102.7 FM रेनबो ते मेरे यानी कि साक्षी दे नाल प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मेलोडीज़।

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी
0: घर के

0: कोई प्रश्न ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी
0: दोनों।

अपना मनपसंद रेडियो शो दिल आज शायर है ते मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश जो थोड़े दिल दिया ना गल्लां नूं आवाज देना आया। अज दी जिहड़ी दुपहर होवेगी ना कुछ खास होवेगी, क्यों? कुछ मिठियां यादां, कुछ अधूरियां ख्वाहिशां अते बेअंत जज्बातां नाल भरी हुई, क्योंकि जदों दिल शायर बन जावे ना तां हर लफ्ज़ वी इक कहानी हुंदी है, हर खामोशी विच इक अहसास हुंदा है। चल शुरू करिए एक सोहनी जिही शायरी नाल। दिल दे कागज़ उत्ते लिख के एहसास कई, दिल दे कागज़ उत्ते लिख के एहसास कई, कुछ पढ़ लेंदे जहान कुछ रह जांदे ने गुप्त ही, मुस्काना दे पिछे ही दर्द वसदा है, यह दिल ही जानता है किन्ना कुछ सहंदा है। दोस्तों हुण जिहड़े शो विच ना सी गल करांगे बहुत सारे टॉपिक्स से कैटेगरीज भी हो सकती हैं प्यार दी उन्हां दी यादा दी ते जो कदे पुरानियां नहीं होंदियां तुसी भी साडे नाल अपनियां फीलिंग सांझियां कर सकदे हो। दोस्तों कोई ऐदा संगणा सुंगणा नहीं है, वह कोई शायरी भी हो सकती है, कोई गीत भी हो सकता जां कोई कहानी जो थोड़े दिल दे करीब होए। एक होर छोटी जी गल दोस्तों कि कुछ रिश्ते ना लफ्ज़ां नाल नहीं एहसासां नाल बढ़दे ने, जिहड़े दिल विच वस जाण वह कदे नहीं मुकदे ने। तैयार हो इस सोहने जे सफर लई कहन दा भाव है जिहड़ा हुण प्रोग्राम चल पिया है इहदे लई, जिहदे हर सुर हर शब्द तुहाडे दिल नूं छोएगा। रेडियो दी आवाज़ नूं थोड़ा जिहा हुण वधा लो ते अपने जज्बातां नूं खुल के जीण दिओ। इह दिल आचार है जिथे दिल बोलदा है ते दुनिया सुणदी है। सो दोस्तो हुण तुसीं इन्नी तां इंट्रोडक्शन सुन ली ते हुण मैं जिहड़े सुनेहा जरूरी जिहड़ी चीज़ असां लगा है साडा फोन नंबर यानी कि वट्सएप नंबर जो कि तुसी अपने फोन च सेव कर लो ते उहदे विच ना तुसी अपनी शायरी गजलां जो भी तुसी लिखदे हो दिल दी गल उह तुसी सानू भेजनी है। नंबर है 9855101027 ते तुसी भेज सकदे हो 9855101027 ते हुनी भेजो ते बस थोड़ा आरज रमनीश वेट कर रहे हैं। उस तो पहला आपां प्यारा जी पंकज उदास जी की आवाज़ आपां जरूर कुछ ना कुछ सुनेंगे। स्टे ट्यून्ड।

कि गुम हो गए उन्हां राहां दे विच, मंजिल दा कोई ठिकाना नहीं सी। गुम हो गए उन्हां राहां दे विच, मंजिल दा कोई ठिकाना नहीं सी। लै गई जिंदगी उन्हां राहां दे विच जिथे असी जाना नहीं सी। कुछ किस्मत दी मेहरबानी सी, कुछ साडा भी कसूर सी। कुछ किस्मत दी मेहरबानी सी, कुछ साडा भी कसूर सी। असी सारा कुछ खो बैठे जिथे असी जाना नहीं सी। क्या बात है जी, क्या बात है। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸਿਕਸਰ ਮਾਰਤਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਸਰ, ਬਾ ਕਮਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਰੋੜਾ ਚੌਂਕ ਚਿਲਿਆਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ, ਆਫਟਰ ਲਵਲੀ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਵੇਟ ਵੈਲਕਮ ਇਨ ਦਿਸ ਸ਼ੋਅ। ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਗਰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ, दर्द दिल का अब चेहरे पर दिखाई नहीं देगा। एक तुझसे बनाने के लिए मैंने बिगाड़ ली सबसे, एक तुझसे बनाने के लिए मैंने बिगाड़ ली सबसे, सो मेरे हक में भी कोई गवाही नहीं देगा। ओ क्या बात है जी, क्या बात है। क्या बात है जी, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਰੋਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਿਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਰਮਨੀਸ਼ ਸਰ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਰਜੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਝੇ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ये कुछ कम है कि बसा है मेरी सांसों में वो, ये कुछ कम है कि बसा है वो मेरी सांसों में वो, सामने हो मेरी आंखों के जरूरी तो नहीं। क्या बात है जी, क्या बात। क्लैपिंग फॉर साडे सरोते वाली, क्या बात है सरोते हो, थैंक यू सो मच यार, तुसी तो बहुत ही कमाल करते हो, तो इन्निया प्यारिया प्यारिया शायरी। आई होप तुसी पक्का जरूर कोई ना कोई अपनी बुक्स चो फाइंड करते होंगे, अज मैं केड़ी भेजा या तो थोड़ी फेवरेट होगी, तुसी वो भी जरूर नीचे मैनशन कर सकते हो कि सर ये मेरी फेवरेट शायरी है। उस तो बाद साडे अगले सरोते गली अफीम वाली प्रेम मार्केट बठिंडा अमरजीत जस्सल चूची लिख रहे ने कि नींद से मेरा ताल्लुकात ही नहीं बरसों से, नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं बरसों से, ख्वाब आ आ के मेरी छत पे टहलते क्यों है। क्या बात है जी, देखो जी साडे ना मन विच जदों अही लाइन पढ़ते ना, सानू जदों अगली लाइन ना सस्पेंस बन के आती ना, केवल इदां दीआं शायरी सुन मैं जिहड़ियां हुण पढ़ियां, ते असल च ये सीगा वाओ यार, एदी एंडिंग कुछ इस हिसाब ना हो सकती सी। सो कमाल है, कमाल है सरोते हो, तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम दिला शायर है, ते मैं अपने होर सरोते दी भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि ना साडा ना जड़ा मोह है बड़ा पुराना है साडे सरोतियां नाल, पर ऐसी चक्कर च ना सी कि मोह पुराना भी आप सुन ही लेंदे हैं, वो इसे तेंदर सरताज जी की आवाज़ दे विच। स्टे ट्यून्ड गाइस, वेटिंग।

दोस्तों तो सुन रहे हो प्रोग्राम दिला शायर है, तो मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। दोस्तों मोहे पुराना था मतलब पता कि एक ओ प्यार जो शोर नहीं मचांदा पर हर सांस ना जो वसदा है, जो 10 साल बाद भी उसी पहेली दे वाली फीलिंग जड़ी पहली फीलिंग होंगी ना वो नाल याद आता है। मोह पुराना है तेरा कोई नया हिसाब नहीं, तेरे नाम दी माला जाप दे कोई दिखावा नहीं। वक्त दे नाल ना जड़ो वधदा मोह है ना दोस्तों, रिश्ता नवा होवे तां दुनिया दिखाउंदी आ, मोह पुराना होवे तां रब भी चुप हो जांदा है। जिन्नी भी उम्र लंघ जावे तू उतना ही खास हो जांदा है, जिवें पुरानी किताब हर बार नई बात लगदी है। दोस्तों इहदे विच ना मां बाप दा प्यार भी है, जिन्नी भी उम्र हो जावे उन्हां दी ना एक कॉल ते ही दिन बन जांदा है। क्यों दोस्तों, साढ़े एक स्रोते ने सानू भेजा है मैसेज पाली प्याला होशियारपुर तों। सजना तेरे दिते सबक ने मैनू डूंगी सोच च पाया है, हक जताउण दे नाल कदे ना कोई अपना बनाया है, झूठे भरमां विच जीण दा सजना असी पूरा मुल चुकाया है। मैं अपने दिल नू सजना, मैं अपने दिल नू सजना, मैं अपने दिल नू सजना, यही हो समझाया है, यही समझाया है। उस बाद साडे एक होर स्रोते ने मैसेज भेजा कि रमनीश जो हर दिन दिल अजीज बैठे हो स्टूडियो के अंदर और दिलाज शायर है प्रोग्राम में हाजिरी लगवाने आ गया उदय चंद्र। आए हाय हाय हाय क्या बात है, पहले तो इस चीज ताड़िया। हाँ जी हुण तुहाडी आपां लाइन्स पढ़ते हैं प्यारे स्रोते। हाजिरी लगवाने आ गया है उदय चंद्र, ठीक है जी। हुण आपां देखिए हाजिरी की लवाई उन्होंने। मौसम ने परिंदों को ये बात बता दी है, मौसम ने परिंदों को ये बात बता दी है, उस झील पे खतरा है उस झील पे मत जाना, वापस नहीं लौटोगे, खाई है तुमने कसम, कश्ती को जला देना पर पार उतर जाना। हालात ने बदल डाले चेहरे के नकुश नियन नक्श मेरे, दुनिया ने मुझे मेरी आवाज से पहचाना है। ओ क्या बात है सर, क्या बात है जी। आज मैनू ये सी यार कोई मेल आर जी नू भी इंप्रेस कर सकता है, क्या बात है जी। थैंक यू सो मच सर उदय जी। उस बाद दोस्तों हुन जिवें कि ना अज दा जिहड़ा हुन टाइम हो चुका है, हो चुके 2:26 ते 10 सैकेंड, ते जिहड़ा प्रोग्राम है बस कुछ ही पला दा रह गया है, ते उस तो पहला एक बार जरूर एक गजल सुनूंगे ते ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਂਗੇ ਉਸਨੂੰ ਖੂਬ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਵੇਗਾ ਸਪੋਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਮੰਗ ਜੋ ਕਿ 2:30 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ 3 ਤੋਂ 4 ਰੇਡੀਓ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸ਼ੋ ਹੈਲੋ ਜਲੰਧਰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਜੇ ਦੋਸਤ ਰਮਨੀਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਗਾਇਜ਼।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है।

0: राम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू
0: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
0: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं
1: जी।
0: तो अजीत जी, क्यों ना इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
1: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की
0: जी।
1: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
0: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
1: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया
0: जी।
1: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए?
0: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता
1: जी। तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की
0: जी।
1: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
0: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
1: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है
0: जी।
1: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
0: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है। लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है
1: जी। हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
0: बिल्कुल,
1: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
0: जी।
1: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं
0: जी। ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृ वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं। इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं
0: जी।
1: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
0: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं, तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं,
1: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
0: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है, लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
1: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है, तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं
0: जी।
1: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है, तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
0: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी ऑडियो

0: दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
1: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागु

0: cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।

0: Your attention, please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention, please. Air India announces.
1: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
2: हाँ बेटा।
1: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
2: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
1: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
2: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
1: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
2: हो सकता है कि...
3: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
2: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
3: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊं। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
2: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फादिल।
1: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया, को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुंचा दो।
2: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ
4: आओ चलो
3: आओ।

0: और सुनाओ कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसे चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।

0: गली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे। जानती हो बेटी मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ जाना है।
1: फिर
2: ठीक है कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा, अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।

0: पापा यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे हैं, जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत।

0: होता था, इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
1: पापा पापा वो देखिए, एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
0: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
1: किस लिए?
0: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
2: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
1: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
2: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
1: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
2: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
1: तो फिर चलिए।
2: हाँ तो आओ, चलो आओ, खाते रहो।

0: श्वेता, कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल, देखिए काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती हैं।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया, मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
0: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर...
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने

0: वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
1: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
0: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
1: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
3: हाँ भाई कादिर, इस सवाल का जवाब तो जाने।
0: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछ कर बताऊंगा।
1: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
0: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
1: वहां क्या है अंकल?
0: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
0: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
2: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
0: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवा कर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
1: पापा मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
2: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
1: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
0: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
1: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
4: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: प्रकार से पीएम जय।
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
3: नमस्कार, आप सबका स्वागत है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। मैं हूं आपके साथ राजश्री त्रिवेदी और आज का विषय है फ्लैट फूड से जुड़ी समस्याएं और इसका निदान। और इस विषय पर आज हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रदीप, सीनियर प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हमारे स्टूडियोज में।
4: थैंक यू सो मच मैम।
3: तो बस एक सिर्फ जो पहला प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिससे कि हमारे तमाम श्रोता ये समझ जाएं कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। विषय तो है फ्लैट फुट से जुड़ी समस्याएं और इसका निदान, प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लैट फुट और इट्स सॉल्यूशंस। लेकिन आप जो हैं वो सीनियर प्रोस्थेटिस्ट

0: और ऑर्थोटिस्ट है, तो ये क्या है प्रोर्थोसिस्ट, ये क्या फील्ड है, क्या क्षेत्र है और किससे डील करता है?
1: प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स ये बहुत एक ब्रॉड फील्ड है, जो लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है इसकी।
0: जी
1: तो प्रोस्थेटिक्स जो होता है कि जो हमारी बॉडी से कोई भी एक पार्ट मिसिंग हो जाए, समटाइम्स हम कह सकते हैं कि एक हमारा कुछ एम्पुटेशन हो जाए, फिंगर एम्पुटेशन, हैंड एम्पुटेशन कट जाए,
0: जी
1: तो बेसिकली तो उसकी जगह पे हम एक आर्टिफिशियल लेग लगा देते हैं जिसको प्रोस्थेटिक्स बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: जी
0: ये डेंटल सर्जन्स भी प्रोस्थेटिक्स वगैरह की चीजों से जुड़े होते
1: वो
0: हैं क्या?
1: ऑर्थोटिक्स में जुड़े होते हैं,
0: ओके,
1: नॉट
0: क्योंकि
1: प्रोस्थेटिक्स।
0: ऑर्थोटिस्ट भी हैं आप,
1: हाँ,
0: तो ये क्या है?
1: ऑर्थोटिस्ट ये होता है कि हमारी बॉडी को कोई भी ऐसे पार्ट की जैसे सब कुछ चीज सपोर्ट के लिए चाहिए
0: जी
1: उस चीज को, जस्ट लाइक जैसे फ्रैक्चर हुआ है तो हमें एक फ्रैक्चर ब्रेस की जरूरत है, या हमें एक फुट में कोई पेन है तो फुट ब्रेस की जरूरत है, उस चीज को ऑर्थोटिक बोलते हैं।
0: जी,
1: आई एम सो
0: थैंक यू सो
1: सॉरी।
0: मच। तो बस आप समझ गए होंगे कि भाई आज हम किस विषय पर बात कर रहे हैं और हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो क्या हैं। हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, एक खूबसूरत संगीत आपको सुनवाते हैं, बस आपके फोन कॉल्स और मैसेजेस का हमें है इंतजार। मैं हूं आपके साथ राजश्री त्रिवेदी।

0: दोस्तों हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप, सीनियर प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट। थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है, मैं भी आपसे जानूंगी इसको हिंदी में क्या कहते हैं। और हम आज बात करने वाले हैं फ्लैट फुट से जुड़ी समस्याओं और इसका निदान के बारे में। लगता है ये प्रॉब्लम बहुत आम है और हमारे पास बहुत सारे फोन कॉल आने शुरू हो गए हैं, कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं। तो प्रश्न हम उन्हीं से सुन लेते हैं कि उनके क्या हैं, ताकि हमारे और लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, वो भी उस प्रश्न से अपने आप को जोड़ लें अगर उनके पास यही प्रश्न है तो। हेलो जी, आपका नाम और आपका पता और आपका परिचय है हमारे पास, बस आप जल्दी से सवाल पूछ लें।
1: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
1: गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ। सर मैडम ने वैसे दे दिया इंट्रोडक्शन। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये समस्या जो है बाई बर्थ होती है या बाद में किन्हीं कारणों से हो जाती है, और इसका इलाज कितना चलता है, सर्जरी भी करनी पड़ती क्या इस केस में?
2: हाँ, समटाइम अगर हम बात करते हैं तो ये बाई बर्थ भी होता है और समटाइम्स सेल्फ से भी डेवलप हो जाता है,
0: ऐसा अपने आप भी हो जाता है।
2: अपने आप भी हो जाता है और बाद में मे बी अदर रीजंस भी हो सकते हैं इसके डेवलप होने के, मे बी एक्सीडेंटल हो सकता है। हाँ, मसल्स वीकनेस हो सकता है।
0: yes. मसल्स वीक से भी हो सकता है, यानी कि ये बाय बर्थ भी हो सकता है, आपने कहा कि जन्म के साथ भी हो सकता है
2: जी।
0: और मसल्स वीक होने पर तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनके भी मसल्स वीक हो सकते हैं?
2: हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को क्या होता है कि हम बेयर फुट चलने के लिए हार्ड सरफेस और टाइल्स पे हम उनको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स होता है उनके फिट को, जो एक नेचुरल अमाउंट में आना चाहिए वो जरूरत से ज्यादा अमाउंट में आता है
0: जी,
2: उस वजह से वो प्रॉब्लम उनको हो सकती है।
0: डॉक्टर साहब एक और हमारे लिसनर हैं, हम उनसे भी उनका सवाल पूछते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताएं।
3: जी मैं मोहम्मद आरिफ बात कर रहा हूँ। शुरू में जब कोई प्रॉब्लम मतलब वो महसूस हो तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह से मतलब
0: ये जानना चाहते हैं कि अगर शुरू में इस तरह की प्रॉब्लम का पता चल जाए या कैसे पता चले कि फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है।
2: अगर आपको आइडेंटिफाई हो गया है कि हाँ हमें फ्लैट फिट है, तो आपने किसी भी प्रोफेशनल प्रोस्थेटिस्ट या ऑर्थोटिस्ट को, अब आपके नियरेस्ट में ही काफी सेंटर्स होते हैं, आपने जस्ट गूगल करना है और आप सर्च करके आप उनको जाके दिखा सकते हैं, फिर या फिर आप हमारा सेंटर या दिल्ली में आप यहाँ के भी चेक करा सकते हैं। तो उस केस में होना क्या है कि आपके लिए एक सिंपल सा एक आर्ट सपोर्ट बना के देंगे अगर फ्लैट फिट है तो, और वो डिपेंड करेगा कि डिग्री क्या है फ्लैट फिट की, उसके अकॉर्डिंग आर्ट सपोर्ट बना के जस्ट आपने वो पहनना है 3-4 ईयर्स, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे इट्स क्योर कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर क्योर कर रहा है तो हम उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे आगे के लिए।
0: तो डॉक्टर साहब ये क्या कोई सीरियस प्रॉब्लम है या नॉट दैट सीरियस के मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है पैर तो है ना?
2: ये काफी सीरियस प्रॉब्लम है, इसकी वजह से काफी कुछ डिपेंड करता है हमारी बॉडी पे। फ्लैट फुट की वजह से फुट में तो पेन आता ही है, इसके साथ साथ में नी में भी पेन रहता है
0: जी,
2: हिप जॉइंट में भी पेन आता है, और सबसे बड़ा जो रहता है लोअर बैक का रीजन के लोअर बैक में पेन आ रहा है, तो ये भी एक फ्लैट फुट से बड़ा कॉज है।
0: ओके तो मतलब ये जो प्रॉब्लम है आपने कहा कि बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, इससे आपके कमर में दर्द, पैर में दर्द, मसल्स पेन्स वगैरह हो सकता है, तो इसका ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली होगा फिर डॉक्टर साहब, तो क्या ट्रीटमेंट है, कितना वक्त लगता है और क्या ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है, क्या करना चाहिए उन लोगों?
2: हाँ,
0: को
2: ट्रीटमेंट है इसका
0: जी,
2: डिपेंड करता है कि किस एज में हुआ है।
0: ओके
2: हाँ, कि ये जरूरी नहीं कि हम इसका ट्रीटमेंट, जैसे कि हम बात करते हैं कि आर्ट सपोर्ट पहनने से इसके लिए अच्छा रहता है।

0: पर ये भी जरूरी नहीं कि हाँ आर्ट सपोर्ट पहना ही जाए, डिपेंड करता है कि सीवियरिटी, मतलब कि क्या कंडीशन है, कितना सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है. बहुत ज्यादा सीवियर है तो उस केस में हम इंसॉल दे देते हैं पहनने के लिए.
1: इंसॉल क्या होता है?
0: इंसॉल होता है कि एक शूज के अंदर लग जाता है
1: जी,
0: के आर्च सपोर्ट टाइप ही होता है जिसके फिट में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा देता है
1: जी.
0: और हमारे आर्च जैसे फुट का नॉर्मल आर्च होता है उसी शेप को मेंटेन करा देता है.
1: ओके.
0: तो उसके थ्रू भी हम इसको क्योर कर सकते हैं. ये मॉडरेट और सीवियर केस, माइल्ड है तो हम एक्सरसाइज के थ्रू भी इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं.
1: अच्छा, माइल्ड है तो फिर भी इट्स मोर मतलब चांसेस ज्यादा हैं कि वो ठीक हो सकता है. लेकिन क्या कारण क्या हो जाता है फ्लैट फुट का डॉक्टर साहब? What could be the root cause, the reason?
0: रीजन इसका ये है कि अगर हम बात करते हैं कि अडल्ट एज में फ्लैट फुट के पहले नहीं था, अभी फ्लैट फुट हो रहा है, ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आता है कि पेशेंट्स हमसे आके कहते हैं कि पहले मेरा फ्लैट फुट नहीं था, आफ्टर 40 इयर्स अब मैं देख रही हूँ कि मेरा फ्लैट फुट होता जा रहा है. तो उसका एक रीजन ये होता है कि मसल्स वीक, कि एज के अकॉर्डिंग मसल्स क्या है वीक होती जाती हैं और बॉडी वेट क्या है इंक्रीज होता जाता है. ऐसा नहीं है कि एज के अकॉर्डिंग हमारा कि बॉडी वेट भी डाउन जा रहा है, मसल्स वीक हो रही है. तो बॉडी वेट ऑलवेज इंक्रीज होता है, मसल्स वीक होते हैं. तो अल्टीमेटली जो बॉडी का वेट है वो आता फुट पे ही है
1: जी.
0: और जब वो फुट पे आता है तो फुट की टेंडेंसी क्या है कि या तो वो इनसाइड की तरफ फॉल करता है, अंदर की तरफ गिरेगा या बाहर की तरफ. 99% तो अंदर की तरफ ही फॉल करता है जिसकी वजह से आर्च है वो सप्रेस होने लगती है, कोलैप्स होने लगती है. तो जिसे हम देख के कहते हैं कि अच्छा आपका ये फ्लैट फुट हो गया है. तो ये एक रीजन है. अदरवाइज तो एक रीजन मैंने बताई दिया है कि हेरिडिटरी भी होता है. हेरिडिटरी होता है तो बच्चों में इसे करेक्ट कर सकते हैं.
1: अच्छा, ओके. तो अगर छोटे बच्चों में जन्म के साथ अगर पता चल जाए, मेरे ख्याल से इतने छोटे बच्चे का तो पता चल पाता है डॉक्टर?
0: नहीं, मिनिमम टू मिनिमम हमें इसे चेक करने के लिए 5 ईयर्स एटलीस्ट होना चाहिए. 5 साल के बाद में हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये फ्लैट फुट है या नहीं है.
1: यानी कि जब वो बच्चा 5 साल का हो जाता है तब जाकर ही पता चल पाता है कि ये फ्लैट फुट है या नहीं. और उसके बाद अगर कोई माँ बाप चाहे कि हम इसकी सर्जरी करवाएं, क्योंकि 5 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, तो क्या उतने छोटे बच्चे के लिए उस पे काम किया जा सकता है?
0: नहीं, उस केस में तो हम उन्हें वेट एंड वॉच वाला होता है कि अच्छा हम इतने टाइम वेट करते हैं. अगर बहुत ज्यादा सीवियरिटी है
1: जी
0: तो
1: जी.
0: आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि हाँ ये सीवियरिटी लेवल ये है हमारा. तो हम एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग अपने बेसिस पे देख के बता देंगे कि अच्छा आपने अभी वेट करना है या आपने अभी सर्जरी के लिए जाना है, ऑर्थोटिक मैनेजमेंट के लिए जाना है. ऑर्थोटिक मैनेजमेंट मीन्स के आपने इंसॉल के लिए जाना है, आर सपोर्ट के लिए जाना है,
1: ये सारी चीजें हो सकती हैं. ओके, हम अपने एक लिसनर से जुड़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब. हेलो.
2: हेलो
1: जी, अपना नाम बताएं.
2: जी नमस्कार जी.
1: हाँ नमस्कार,
2: धर्मवीर बोल रहा हूँ गांधीनगर से.
1: जी क्या सवाल है आपका?
2: डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं ये पूछना चाहूंगा.
0: नमस्कार जी.
2: कि इस बीमारी के आने से पहले लक्षण के क्या क्या बातें हमें देखनी पड़ती है कि ये बीमारी जो फ्लैट फुट की आ रही है इसके बारे में पहले से जानकारी ले पाए कि ये बीमारी है? और दूसरी बात है कि अगर डायबिटीज पेशेंट है तो उसको फ्लैट फुट होता है तो उसको पहले से ही पैरों में प्रॉब्लम रहती है, उसके जो पैर सुन रहते हैं, हीट रहते हैं, नसें कमजोर हो जाती हैं, तो ये दोनों चीजें अगर कंबाइन हो जाए, दोनों मिल जाए तो कितने ज्यादा परेशानी दे सकती है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे?
0: हाँ, इसके जो सिम्टम्स होते हैं जो हम इन्हें देख सकते हैं स्टार्टिंग में, अगर फ्लैट फिट होता हुआ जा रहा है, पहले नहीं था, तो हमारी हील पे प्रेशर ज्यादा आने लगेगा, हील में पेन आने लगेगा, हमारी काफ मसल टाइट होने लगेगी पहले से ज्यादा. हम वॉक करने में जो हम पहले वॉक कर पाते थे 5 किलोमीटर, अभी उतना वॉक नहीं कर पाएंगे. उससे पहले हम थक जाएंगे, जैसे कि 2 किलोमीटर पे हम थक जाएंगे, उसके बाद हम वॉक नहीं कर सकते. तो उस 2 किलोमीटर थकने के बाद में हमें नाइट में भी पेन फील होता है पैरों में, हमारी जो नी है उसमें, जो घुटनों में. तो ये प्रॉब्लम, ये साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं इस चीज को. और रहा आपका जो डायबिटिक के केस में आपने बात की है, तो डायबिटिक के केस में क्या है कि सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि पैरों में जलन होने लगती है और पैर में हल्का हल्का सा हम ऊपर से दिखेंगे तो ब्लैकेज पन आने लगता है कि हाँ पैर थोड़े थोड़े हमें काले दिखने लगते हैं
1: जी.
0: ये बहुत छोटा सा एक, मतलब ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं कहेंगे, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए काफी होता है. और डायबिटिक के केस में बर्निंग,
1: आपने बताया काले पड़ने लगते हैं,
0: हल्का सा ब्लैक पैचेस भी आ जाता है समटाइम. ये जरूरी नहीं कि हर पेशेंट पे ही आए, किसी किसी पेशेंट पे आ भी जाता है.
1: ओके, और यही सिम्टम्स हैं?
0: ये सिम्टम्स हैं.
1: हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, एक खूबसूरत संगीत आपको सुनवाते हैं. मैं हूँ आपके साथ राजश्री त्रिवेदी.

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फ्लैट फुट से जुड़ी समस्याएं और इसका निदान, प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लैट फुट एंड इट्स सॉल्यूशंस। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप, जो सीनियर प्रोस्थेटिस्ट हैं और ऑर्थोटिस्ट। मैं हूं आपके साथ राजश्री। डॉक्टर साहब, ये जो कैन फ्लैट फुट डेवलप इन अडल्टहुड ऑल्सो, बड़े होने पे भी हो सकता है या सिर्फ मतलब जन्म के साथ ही हो सकता है, और कितनी तरह के फ्लैट फुट होते हैं?
1: फ्लैट फुट तो काफी टाइप के होते हैं, बड़े होने पे भी डेवलप हो सकता है। मैंने बताया कि ये मसल रिलेटेड भी प्रॉब्लम है
0: जी।
1: अगर हमारे मसल्स बॉडी की वीक होती जा रही है और बॉडी वेट इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से भी फ्लैट फुट हो सकता है।
0: ओके,
1: और टाइप्स ऑफ फ्लैट फुट, आप कितने तरह के फ्लैट फुट होते हैं? तो जैसे कि हम बात कहेंगे, एक फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट होता है। अगर हम चेयर पे बैठते हैं, पैरों को उठा के देखते हैं तो हमारे पैर के अंदर एक आर्क नजर आता है
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जैसे ही हम उसके ऊपर वेट डालते हैं तो हमें दिखता है कि आर्क नहीं है, तो फ्लैट फुट फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट में आता है। एक होता है रिजिड, हमने पैर को ऐसे ऊपर से उठा के देखा
0: जी
1: और वहां पे भी आर्च नहीं है, तो नॉर्मली आर्च नहीं है उनका, वो रिजिड फ्लैट फुट होता है, उसे हम परमानेंट फ्लैट फुट भी कह सकते हैं।
0: ओके ओके, यानी कि जो बाय बर्थ हुआ रहता है।
1: बाय बर्थ हुआ रहता है।
0: ओके, हमारे कुछ लिसनर्स बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, देखें उनके क्या सवाल है। कुछ मैसेजेस भी आए हुए हैं डॉक्टर साहब। ये मैसेज है, क्या अधिक नंगे पैर रहने से भी ये हो सकता है? सेना भर्ती में ये अयोग्यता मानी जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और कृपया इसका उपचार बताएं। दिनेश शर्मा हमें लिखकर पूछते हैं, शिमला झुंझुनू राजस्थान से।
1: जी बिल्कुल, ये ज्यादा नंगे पैर रहने से भी हो सकता है। ज्यादा वेयर फुट रहने से, अगर आप वेयर फुट हार्ड सरफेस पे हैं, लाइक फ्लोर पे हैं, टाइल्स पे हैं, मार्बल्स हैं, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये इसकी वजह से आर्मी में भी ये चेक किया जाता है कि हाँ फ्लैट फुट है या नहीं है। तो इसके लिए आप प्रिकॉशन ले सकते हो, आप ऑलवेज कैरी करें फुटवेयर, या मैक्सिमम बाहर अगर जा रहे हैं तो शूज, स्पोर्ट शूज कैरी करें विद आर्च सपोर्ट। या समटाइम आप अपने ही नियरेस्ट में, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा फ्लैट फुट हो रहा है, तो जैसे मैंने अभी बताया कि आप अपने ही पास में किसी भी, जस्ट गूगल करें कि मेरे नियर में प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स सेंटर कहाँ पर है
0: जी,
1: तो वहां पे आप जाके चेक करा के आप अपने लिए अकॉर्डिंग आर्च बनवा सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी सपोर्ट करेगी।
0: अच्छा।
1: और आपको हेल्प करेगी कि आप आर्मी में जा सकते हैं, आपके आर्च को मेंटेन करके रखेगी, तो फ्लैट फुट नहीं होने देगी वो।
0: यानी इसका उपाय ऐसे भी है कि इसको बनवाए, तो कहाँ बनवाते होंगे इसको डॉक्टर?
1: ये हर जगह इंडिया में हमारे यहाँ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक सेंटर ओपन है। जैसे हमें गूगल करने की जरूरत है, सिर्फ अवेयरनेस की वजह से पता नहीं है लोगों को।
0: ओके अच्छा, तो वो वहां जाकर इसके बारे में पता कर सकते हैं और अपने पैर के शेप का या साइज का बनवा सकते हैं। फुट पैरों में जलन किस, ये जानना चाहते हैं कि पैरों में जलन किस वजह से होती है। ये अमर रमेश कुमार खत्री, मेरे फादर के फुट में काले पड़ गए, अभी आप बता रहे थे कि पैर काले पड़ जाते हैं, ट्रीटमेंट कैसे होगा, प्लीज इन्फॉर्म।
1: तो ये बिल्कुल ठीक है कि पैरों में जलन होती है, उसे हम बर्निंग भी बोल देते हैं, कि वो कभी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एक होती ही रहती है, समटाइम के लिए नहीं भी होती है फिर होती है। उसका एक रीजन ये होता है कि एक तो डायबिटीज होते हैं, जैसे आपने बताया कि पैर ब्लैक हो गए हैं उनके, काले पड़ने लगे हैं, तो डायबिटीज का एक रीजन होता है। और दूसरा रीजन होता है ब्लड सर्कुलेशन का, उनका ब्लड थिकन हो गया है। ब्लड सर्कुलेशन जो इस स्पीड से होना चाहिए ब्लड वेसल्स में, हमारी बॉडी में जो रक्त का भाव होता है वो उनका स्लो हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड नीचे रहता है और जलन होने लगती है।
0: ये किसी के साथ भी हो सकता है?
1: ये किसी के साथ में भी हो सकता है। जी मैम।
0: ओके, और ये एक मैसेज है मेरठ से, मेरे भाई के लेग के जॉइंट में काफी टाइम से प्रॉब्लम है, पेन रहता है और एमआरआई भी करा लिया है, मेडिसिन भी देते हैं उसको, लेकिन उसको बहुत तकलीफ है। ये खुशी त्यागी का मैसेज आया है मेरठ से, बट ये बहुत क्लैरिटी नहीं है,
1: क्लैरिटी नहीं है किस जॉइंट में पेन है।
0: जी जी जी। और ये पूछना चाहती है मनीषा लखनऊ से कि

0: या फ्लैट फुट की वजह से, ये तो हमने बता ही दिया अभी, और अगर जॉइन नहीं कर सकते हैं तो ऐसा कि नॉर्मल फुट क्यों? अब ये तो डॉक्टर साहब कैसे बताएंगे कि नॉर्मल फुट क्यों चाहिए आर्मी में? ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से सही दौड़ना भागना भी पड़ता है बहुत, उसमें फौज की जिंदगी में बहुत सारी
1: लाइफस्टाइल उनका डिफरेंट होता है।
0: जी जी, क्या सर्जरी करवाने के बाद हम लोग भी फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल, अगर सर्जरी ओके है तो आप फोर्स ज्वाइन कर सकते हो।
0: बिल्कुल, यहाँ पर हम लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, आप जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ।

0: और ऑर्थोटिस्ट। डॉक्टर साहब, एक मैसेज आया हुआ है वारिस अली खान का लखनऊ से, और ये जानना चाहते हैं कि इलीजरोव के बारे में बताएं, आई मीन क्या है ये
1: इलीजारो एक टेक्निक है जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में यूज की जाती है। आई थिंक ऑर्थोपेडिक सर्जन इस चीज का अच्छा आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निक आई थिंक बोन को एनलार्ज करने के लिए यूज की जाती है, मतलब समटाइम बोन को बड़ा करने के लिए खींचकर। जी
0: ओके। और एक और प्रश्न आया हुआ है, किसी का मैसेज है, ये जानना चाहते हैं, इन्होंने तो फोन से भी हमसे बात कर ली थी कि टेंशन फ्री रहना चाहिए, बिजी रहना चाहिए, इजी रहना चाहिए, इतनी सारी जानकारी अगर आप दे ही देंगे हमें तो फिर हम अपने इस प्रोग्राम में डॉक्टर साहब से क्या पूछेंगे। फिलहाल हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आप जुड़े रहिए प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर और रेडियो डॉक्टर में आज विषय है फ्लैट फुट से जुड़ी समस्याएं और इसका निदान, प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लैट फुट एंड इट्स सॉल्यूशंस। और हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर प्रदीप, सीनियर प्रोस्थेटिस्ट

0: एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप, और हम बात कर रहे हैं फ्लैट फुट से जुड़ी समस्याएं और इसका निदान विषय पर। और आप सीनियर प्रोस्थेटिस्ट हैं और ऑर्थोटिस्ट। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी। और डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कितने तरह का फ्लैट फुट होता है, ये क्या ये सब एक्सरसाइज के जरिए भी ठीक हो सकता है, ऐसी कोई संभावना है?
1: हाँ बिल्कुल, अगर हमें लगता है कि माइल्ड कंडीशन है तो वो एक्सरसाइजेस के थ्रू भी हम उसे ठीक कर सकते हैं।

0: जी
1: ओके तो एक्सरसाइज अगर माइल्ड है तो एक्सरसाइज के जरिए ठीक हो सकता है ऐसा आपने बताया तो इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है डॉक्टर साहब एक्सरे होता है क्या होता है
0: हाँ,
1: कैसे मेडिकली ये डायग्नोस होता है
0: मेडिकली डायग्नोस करने के लिए आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास में जा सकते हैं एक्सरेज के थ्रू और समटाइम वो अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता देंगे कि आपका फ्लैट फुट है या नहीं है
1: जी.
0: है तो कितना कोलैप्स कर रहा है आपका आर्च जैसे कि हमारा आर्च डाउन होता हुआ जाता है
1: जी.
0: या पूरा फ्लैट हो जाता है जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं पामपट हो गया है तो वो आपको एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस मतलब डॉक्टर्स के ही बता सकते हैं मेनली जी
1: ओके ओके और आपने बताया कि इसमें सर्जरी भी की जा सकती है
0: सर्जरी भी की जा सकती है जी
1: तो कितना वक्त लगता है इस मतलब पूरी तरह से ठीक हो जाने में और चलने में सर्जरी के बाद
0: ये एक डॉक्टर ही आपको काउंसिल कर पाएगा कि हाँ आपका सीवियरिटी ऑफ लेवल पे कि समटाइम एक ही सर्जरी में हो जाता है समटाइम उसी के लिए दो सर्जरी करनी पड़ती है डिपेंड करता है और ये डॉक्टर ही आपको कंसल्ट जब आप जाएंगे कंसल्टेशन के लिए तो आपको जानकारी दे देंगे बताएंगे
1: तो मतलब कि सर्जरी सक्सेसफुल होते हैं
0: हाँ
1: ठीक होता है
0: सर्जरी भी सक्सेसफुल रहती है जी मैम
1: तो अगर मान लीजिए किसी का फ्लैट फुट नहीं है नॉर्मल फुट है और फिर वो धीरे धीरे फ्लैट फुट में बदल जाता है तो आपने बताया कि वेट भी उसका एक कारण
0: वेट
1: है
0: भी एक उसका रीजन होता है मसल्स वीकनेस होती हैं समटाइम वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो सकती है जिसकी वजह से एक और प्रॉब्लम होती है कि जिसे हम नॉक नी बोल देते हैं नी हमारे क्लोज आने लगते हैं एक होता है बोलेग नीज दूर जाने लगते हैं पैर पास आने लगते हैं तो वो वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी से आर्च पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है
1: अच्छा ओके ये एक मैसेज आया हुआ है फ्रैंकफूट आई डोंट नो इससे जुड़ा हुआ है या
0: नहीं
1: आप बेहतर बता सकते हैं डॉक्टर साहब ये किसी बीमारी के बारे में जानना चाहती हैं लेकिन वो फ्रैंकफूट है मेरी समझ में भी नहीं आया आप भी स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि मैंने आज कई बार मैसेज आपको बताया है कि भाई आज का विषय क्या है जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं तो फिर आप दूसरे विषय पे अगर हमें मैसेज लिखकर भेजेंगे और हम उसको अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं करेंगे तो आपकी जो नाराजगी है वो बहुत नाजायज होगी बहरहाल डॉक्टर साहब व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्लैट फीट अगर किसी को फ्लैट फीट है तो उससे जुड़ी और क्या क्या समस्याएं या शारीरिक तकलीफें हैं जो किसी को हो सकती हैं
0: बिल्कुल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि उनको वॉकिंग में प्रॉब्लम आएगी बहुत ज्यादा लॉन्ग वॉक नहीं कर पाएंगे और समटाइम एक फ्लैट फुट में जो कॉमन प्रॉब्लम आती है हील पेन की आती है हील पेन और एक प्रॉब्लम है बड़ी कॉमन है प्लांटर फेसाइटिस की कई सारे लोगों ने नाम भी सुना होगा कि हाँ हमारे फिट में पेन काफी रहता है या हमारे प्लांटर फेसिया की प्रॉब्लम है डॉक्टर ने हमें प्लांटर फेसाइटिस डायग्नोस कर दिया है हील पेन डायग्नोस कर दिया है तो उस केस में भी ये फ्लैट फुट की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं
1: अच्छा बहरहाल और हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि एक्सरसाइज से अगर माइल्ड है तो एक्सरसाइज से ये ठीक हो जा सकता है लेकिन अगर माइल्ड नहीं है तो फिर आपको सर्जरी वगैरह करना पड़ेगा
0: सर्जरी करना पड़ सकता है या फिर आप नॉर्मल ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं जैसे कि इंसो आर सपोर्ट यूज कर सकते हैं आप वो एक वाइटल रोल क्योंकि 50 या 60 की एज में अगर हम सर्जरी की नहीं सोच सकते
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
0: क्योंकि एक अब 40 इयर्स का या 50 इयर्स में 60 इयर्स में हमारे ये प्रॉब्लम हो रही है तो इस केस में हम सर्जरी के लिए नहीं जा सकते हैं
1: जी.
0: कोई भी सर्जरी के लिए जाने से पहले थोड़ा सोचता है घबराता है तो उस केस में आप नॉर्मली आर्च सपोर्ट पहनकर शूज के अंदर बड़े आराम से लग जाता है बहुत कंफर्टेबल वॉकिंग होती है उसी को इनसोल्स कहते हैं बेसिकली
1: तो क्या ये फिर हमेशा पहनना होगा इनसोल्स जो है
0: हाँ अगर आप हमेशा पहन सकते हैं तो वेल एंड गुड बहुत अच्छी बात है नहीं पहनना चाहते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो पहने और एक्सरसाइजेस के थ्रू अपनी जो आपकी मसल्स वीक हो गई हैं उसको स्ट्रेंथन अप करें डेली टू टाइम्स मतलब दिन में 2 से 3 बार वो एक्सरसाइजेस करें और नॉर्मल जैसे वो आपकी वॉकिंग थी वो उस वॉकिंग को रिटेन करने की कोशिश करें तो आप उसको फिर अवॉइड हटा सकते हैं उसे
1: और आपने बताया कि इनसोल्स बहुत मतलब हेल्प करता है अगर आप उसको पहने अगर जब भी जरूरत होती है तो वो धीरे धीरे इसका कोई परमानेंट क्योर है डॉक्टर साहब
0: परमानेंट क्योर तो मैम इसका अगर बात करते हैं अप टू 15 इयर्स तक ही हो सकता है उसके बाद तो हम समटाइम हम क्या
1: अप टू 15 इयर्स ऑफ द डायग्नोस और
0: इन अर्ली स्टेज
1: अर्ली स्टेज
0: हम इनको 15 साल तक ही इसमें हम करेक्शन देख सकते हैं उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी ये रह जाती है कि हम इसे सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं अब यहां से आगे ये बढ़े नहीं वरना क्या होता है कि अगर हम ये सारी चीजें यूज नहीं करते हैं छोड़ देते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ने लगती है
1: इट्स जस्ट लाइक अ मेडिसिन कि आपको लगातार

0: यूज करते रहना है उसको, इनसोल्स या
1: हाँ,
0: ये
1: कह
0: वो।
1: सकते हैं मैम,
0: हाँ क्यों नहीं,
1: बिल्कुल।
0: अभी जैसे आप दवा खाते हैं अपनी बाकी प्रॉब्लम्स के लिए, तो आपको राहत मिलती है उससे, वो
1: जी
0: प्रिवेंट होता है, कम से कम बच जाता है,
1: बच
0: उसके
1: जाते
0: आगे
1: हैं।
0: नहीं बढ़ता है। उसी तरह से अगर आप इनसोल्स या जो भी आप बता रहे हैं वो अगर आप लगातार उसको यूज करें, पैरों में पहने, और थोड़ा सा आपने बताया कि एक्सरसाइज करें कि आपके मसल्स टाइट हों, तो फिर वो जहां पर है वहीं पर रुक जाएगा, वहां से आगे
1: आगे
0: नहीं
1: नहीं
0: बढ़ेगा।
1: बढ़ेगा।
0: बहुत बढ़िया, यहां पर हम सुनते हैं आपकी पसंद का गीत और अपने लिसनर्स को सुनवाते हैं, यानी कि हम लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फ्लैट फुट की समस्याओं के बारे में, उसके निदान के बारे में। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रदीप, जो सीनियर प्रोस्थेटिस्ट हैं और ऑर्थोटिस्ट हैं। मैं हूं आपके साथ राजश्री त्रिवेदी। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना होगा कि ये प्रॉब्लम जो है फ्लैट फुट की, औरतों में ज्यादा आपने देखा या महिलाओं में पाया जाता है, पुरुषों में?
1: नहीं, ये जैसे हम देखते हैं कि आफ्टर 30-35 ईयर्स लेडीज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है।
0: ऐसा क्यों, आफ्टर 30-35?
1: ऐसा इसलिए कि इम्प्रॉपर फुटवेयर।
0: ओके, इम्प्रॉपर किसे कहते हैं? औरतें थोड़ा हाई हील्स पहनती हैं।
1: एग्जैक्टली, जैसे कि आजकल बड़ा फैशनेबल हो रखा है बैलीज पहनना, ओपन स्लीपर्स पहनती हैं। जेंट्स क्या करते हैं कि क्लोज शूज पहनते हैं हमेशा, तो उनके फुट को एक क्लोज शूज स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है।
0: अच्छा।
1: जो अगर फ्लैट फुट नहीं भी है या है भी, तो उनके एक सपोर्ट मेंटेन रहता है
0: जी।
1: तो ये लेडीज में इस वजह से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और सेकंड पॉइंट एक ये भी होती है कि आफ्टर प्रेगनेंसी।

0: वाइल प्रेगनेंसी वेट पुट ऑन हो जाता है बॉडी का, अल्टीमेटली ज्यादा फिट पे ही है तो, और बॉडी काफी फ्लेक्सिबल भी हो जाती है उस मोड में, तो उस वो भी एक कॉज होता है फ्लैट फिट के लिए। अच्छा। तो ये चीज हमने देखी है कि लेडीज में ज्यादा देखने को मिलता है कंपैरेटिवली, अगर हम बात करते हैं मेंस की तो भी मेन में ज्यादा होता है।
1: तो आपका कहना है कि अगर हम औरतें भी मतलब हाई हील्स ज्यादा न पहने और क्लोज्ड जूते पहने जो आगे से बंद रहता है, क्योंकि हम बेलीज पहनते हैं या चप्पल्स पहनते हैं या बहुत तरह की जूतियां होती हैं, जूतियां तो चलिए आगे से बंद रहता है,
0: हाँ।
1: तो ये हमारे पैरों के लिए ज्यादा लाभदायक है।
0: हाँ बिल्कुल मैम।
1: लेकिन औरतें क्या, बहुत से पुरुष को मैंने देखा, पुरुषों को भी देखा, वो भी थोड़ा हाई हील्स पहनते हैं जब शाम का वक्त है, कहीं पार्टी में जा रहे हैं या किसी ऐसे ओकेजन में है, या थोड़ी लंबाई जो है अगर कम है तो उसको थोड़ा सा कॉम्पनसेट करने के लिए। जी
0: किसी ओकेजन में जा रहे हैं तो आप कैरी कर सकते हैं, बल अब अगर पूरा दिन आप ये चीज पहन रहे हैं तो आपकी बॉडी के फोर्सेस कहीं ना कहीं तो डेविएट हो ही रहे हैं
1: जी,
0: तो उसकी वजह से फुट में प्रॉब्लम क्रिएट हो मतलब आ जाती है,
1: हो सकता है। डॉक्टर साहब क्या इसका खान पान से भी कोई लेना देना है या एनीथिंग व्हिच व्हाट यू ईट इज फाइन?
0: बिल्कुल, एक हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ में एक्सरसाइजेस जैसे कि योगा कह सकते हैं, वॉक कह सकते हैं, मॉर्निंग वॉक। अगर हम ये मॉर्निंग वॉक और योगा नहीं करते तो हमारी मसल्स क्या स्टिफ होती जाती हैं, टाइट होती जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी लोअर बैक में भी पेन वगैरह ये एक स्टिफनेस ये खिंचाव देखने को मिलता है, जो कि लोअर बैक की मसल्स से ही ओरिजिन होता है फिट के लिए। लोअर बैक से ही मसल्स का ओरिजिन होता है फिट के लिए, जो कि अच्छा। जितने मसल्स टाइट होगा तो उतना वो फुट को इम्पैक्ट करेगा, ऊपर की तरफ पुल करेगा। मसल तो टाइट होगी तो फिट को ऊपर की तरफ पुल करती, तो वो भी एक रीजन होता है कि यहाँ से भी फिट में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए एक तो हेल्दी डाइट, प्रॉपर वॉकिंग और एक्सरसाइजेस अगर ये आप रूटीनली करते हैं तो आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
1: बिल्कुल, हम कहते हैं कि जैसे हमारे पूरे शरीर का बोझ जो है वो हमारे पैर उठाते हैं
0: जी,
1: तो अपने पैरों को मजबूत रखना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हम एक स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ जीवन हम व्यतीत करें तो।
0: जी मैम बिल्कुल,
1: है ना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब स्टूडियो में आने के लिए। चलते हुए एक मैसेज हमारे पास आ गया है, मैं वो घोड़े के जॉइंट में प्रॉब्लम है, आई डोंट नो ये क्या कहना चाहते हैं, चलते चलते झटका सा लगता है फिर पेन होने लगता है, घोड़े के जॉइंट में प्रॉब्लम है। आई मीन ये घुटनों
0: की बात कर रहे हैं वो लोग।
1: जी जी, हो सकता है
0: घोड़े बोलते हैं हिंदी में, अगर अदर लैंग्वेज में बात करते हैं
1: जी।
0: हाँ, तो इस केस में जर्क आ रहा है तो आप किसी डॉक्टर को या ऑर्थोपेडिक सर्जन को जरूर कंसल्ट करें।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रदीप हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन।
0: थैंक यू सो मच मैम।
1: थैंक यू डॉक्टर साहब।

दोस्तों हमारे साथ थे डॉक्टर प्रदीप जो सीनियर प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट हैं और हमें बता रहे थे किस तरह से आप फ्लैट फुट से जुड़ी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। कभी

अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, एफ एम 102.7 मेगाहर्ट्ज से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है ते हुन युवा साथी अपना प्रोग्राम सुनान गे युवाणी।

0: FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आज इंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम युव वाणी आरजे दीक्षा
1: ते बागेश्वर दे नाल।
0: जी दोस्तों, सैगमेंट चल रहा साडा चक दे इंडिया ते बहुत मजा आ रहा तुहाडे नाल सारिआं नाल, असीं आ न्यूज़ शेयर कर रहे हां।
1: बिल्कुल, तो अगली न्यूज़ रैसलिंग की दुनिया की है। अंडर 20 एशियन रैसलिंग चैंपियनशिप दे विच भारत ने गड्डे झंडे, ते थाईलैंड विच खत्म हुई अंडर 20 एशियन रैसलिंग दी चैंपियनशिप विच भारतीय जाबाजा ने बड़ा कमाल करदिया कुल 20 मैडल अपने नाम किए, जिस दे विच 4 गोल्ड, 7 सिल्वर ते 9 ब्रोंज मैडल शामिल ने। महिला ते पुरुष दोवां वर्गों विच भारत दीआं टीमां ने हिस्सा लिया।
0: जी दोस्तों, अगली न्यूज़ आ रही है साड़ी एक अजिही नौजवान खिडारन दी, जिहड़ी एक छोटी जी

दोस्तों, तो सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, तो मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। पैसे दी तंगी कारण ना पढ़ाई छड़ी, न्यूडल्स खा के काम चलाउंदे सन। अज टीम इंडिया दे स्टार हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट टीम दे बहुत ही महान खिडारी दे वड्डे खिडारी ने। भारतीय क्रिकेट दे स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अज करोड़ा प्रशंसकां दे चहेते हन। पर जिंदगी विच ना वड्डे संघर्षां तों गुजर के उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। फिलहाल उन्होंने नवी फ्रेंचाइजी विच जाण दीआं चर्चावां जोरां ते हन। देखो जाणदे हां दोस्तों कि उन्होंने संघर्ष तो सफलता की कहानी आखिर विच की है। दोस्तों कहिंदे ना संघर्ष, एक मैच दे ना सिर्फ 400 रुपए मिलते, सर्जरी भी बनी रुकावट। वडोदरा दे छोटे मोटे मैदानां विच खेड के टीम इंडिया दे सितारे बने हार्दिक दा नाम जन्म 11 अक्तूबर 1993 नूं सूरत दे 84 विच होया सी। उन्हां दे पिता कार फाइनेंस दा कारोबार करदे सन। हार्दिक अते उन्हां दे भरा करनाल पांड्या करियर क्रिकेट विच बनाउण लई परिवार वडोदरा शिफ्ट हो गया। वडोदरा विच पिता नूं दिल दा दौरा पै गया। उन्हां दी विगड़दी सेहत कारण आमदन बंद हो गई, तां परिवार नूं गहरी आर्थिक तंगी विच लंघना पिया। एक समां अजिहा सी जदों हार्दिक कोल स्कूल दी फीस देण लई भी पैसे नहीं हुंदे सन। उन्हां ने 9वीं जमात तों बाद स्कूल छड्ड दित्ता। दोवें भरा लोकल क्लब विच पिंडां विच क्रिकेट खेडण जांदे सन, जिथे उन्हां नूं 400 रुपए मिलदे सन। कई बार दोनों समय मैगी खा के पेट भरना पैंदा सी। क्रिकेट किट खरीदन दे भी पैसे नहीं सन, तां उधार दे के किट लै के खेडदे सन। हार्दिक सिर्फ ना सेहत समस्यावां नाल ही जूझदे रहे। 2019 विच लंदन विच वड्डी स्पाइनल सर्जरी हुई, जिस कारण महीनियां तक ओह खेड तो भी दूर रहे। लोग उन्हां दा करियर खतरे विच मन्नण लग पए सन। आखिर जदों कहिंदे ना इन्ना कुछ सिया तां सफलता तां मिलनी ही सी। आईपीएल जित्या, 2 बार विश्व विजेता टीम विच रहे। 2015 दा साल हार्दिक दा टर्निंग पॉइंट रहा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विच उन्हां दे प्रदर्शन नूं देख के मुंबई इंडियंस ने उन्हां नूं आईपीएल विच खरीदिया। जनवरी 2016 विच उन्हां दे ऑस्ट्रेलिया खिलाफ T20 फॉर्मेट विच डेब्यू किया। जल्द ही वह वनडे अते टेस्ट टीम विच भी शामिल हो गए। 2022 विच गुजरात टाइटन्स दे कप्तान रहिंदे होए उन्होंने आईपीएल चैंपियनशिप जीती। दोस्तों 2024 विच उन्होंने भारतीय T20 वनडे टीम का उप कप्तान बनाया गया। हार्दिक 2024 अते 2026 की T20 विश्व कप जेतू टीम विच भी शामिल रहे सन। तो दोस्तों इस कहानी नूं वी अगे वधाउंगे, पर उस तों पहलां एक प्यारा जा गाना तुहाडे सामने। दोस्तों

दोस्तों तो ही सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी विद आरजे दोस्त रमनीश। दोस्तों असी गल कर रहे थे हार्दिक पांड्या की सक्सेस स्टोरी बारे ते उन्हां दे संघर्ष दी गल्लां बातां कर रहे थे। सफलता की गल तो शुरू करते हैं कि जदों उन्होंने IPL जितया ते दो बार विश्व विजेता टीम विच रहे। दोस्तों 2015 दा साल हार्दिक दा ना टर्निंग पॉइंट रहा। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी च उन्हां दे प्रदर्शन नूं देख के मुंबई इंडियंस ने उन्हां नूं एक IPL विच खरीदया। जनवरी 2016 विच उन्हां दे ऑस्ट्रेलिया खिलाफ T20 फॉर्मेट विच डेब्यू किया। जल्द ही वह वनडे टेस्ट टीम विच भी शामिल हो गए। दोस्तों जिवें कि तुहानूं पता है कि तुसीं उन्हां दे फैन हो इसलिए तुहानूं पता है। 2022 विच गुजरात टाइटन्स दे कप्तान रहिंदे होए उन्हां ने IPL चैंपियनशिप जीती। 2024 विच उन्हां नूं भारतीय T20 अते वनडे टीम दा उप कप्तान बनाया गया। दोस्तों हार्दिक 2024 अते 2026 दी T20 विश्व कप जेतू टीम विच शामिल रहे हन। अंतरराष्ट्रीय करियर विच हार्दिक 94 वनडे मैचा विच 1904 अते 138 T20 मैचा विच 2000 तो वध रन बना चुके हन अते दोवें फॉर्मेट विच क्रमवार 91 अते 114 विकटां भी लै चुके हन। दोस्तों क्या बात है, कई मैचां ने जिहड़े निजी पुरस्कार भी उन्हां दे नां हन। दोस्तों इत्थे सार पता की है, पैसे की कमी सर्जरी अते संघर्ष तो बाद भी ना अज हार्दिक पांड्या भारत दे सब तो वड्डे ऑलराउंडर विचों इक हन। कि तुसी हार्दिक दे किसी मैच नूं खास तौर पर फॉलो किया है किता है नो, तुसी बहुत वड्डे फैन हो हार्दिक पांड्या दे, एनो मैं भी उन्हां विचों इक हाँ, तो उन्होंने बहुत ही कमाल किया है। तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी। दोस्तों अगला गाना प्यारा जिहा तुहाडे लई पेश करदा, स्टे ट्यून्ड।

दोस्तों तो ये सुन रहे प्रोग्राम लव यू जिंदगी विद आरजे दोस्त रमेश। दोस्तों तुहानूं पता है कि दान दित्तियां कॉपियां तो ना 21,000 बच्चों नूं जिहड़ियां मिलियां नोटबुकां। की होया, बेंगलुरु दे ना 3,000 तो वध घरां ने अपने बच्चों दीआं पुरानियां कापियां ते ना खाली जिहड़े सफ़े दान कीते, उन्हां चों खाली जिहड़े सफ़ियां तो ना नवीआं नोटबुकां बना के 50 सरकारी स्कूलों के 10,000 बच्चों नूं दित्तियां गईआं। इस साल कुल 21,000 बच्चों नूं नोटबुक मिलियां। आखिर मुहिम किवें काम करती है? ना हुंदा है NGO यूथ फॉर परिवर्तन, यह मुहिम चलता है तो चला है। तरीका यह हुंदा, करो तो पुरानियां जिहड़ियां कापियां इकट्ठियां करो, खाली सफ़े कढ़ो, बाइंडिंग करन वालियां ना नवीआं नोटबुकां बनाओ, सरकारी स्कूलों के लोड़वंद बच्चों तक पहुँचाओ। फायदा, कागज़ बर्बाद नहीं हुंदा, गरीब बच्चों नूं मुफ्त नोटबुक मिल जाती है। दोस्तों 4 साल का असर है कि हुण तक 25,000 तो वध नोटबुक तैयार कीतियां जा चुकी हैं। सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं, देश के 8 राज्यों विच गिव पेपर बैक ना हेठ यही मुहिम चल रही है। हुण तक 2,00,000 कापियां इकट्ठियां करके 35,000 नोटबुक बनाई गई हैं। दोस्तों इसका टीचा ही है कि प्रोजेक्ट हैंड पार्वती कुमारी का कहना है कि असी चाहते हाँ कि यह कापियां घट्टो घट 11,000 विद्यार्थियों तक पहुँचन। सार दोस्तों यही है कि कूड़ा समझ के सुट दित्तियां जाण वालियां अद्धियां खाली कापियां हुण किसी बच्चे की पढ़ाई का सहारा बन रही हैं। कि तुसी भी चाहते हो कि तुसी भी ये चीज़ करो, दोस्तों करनी ही चाहिए। दोस्तों जरूर करो।

0: चिंता ना कर साहिबा, मिर्जे दी बकी हवावा नु चीर दे होया, पलां च तेरे वीरा तो कोहा दूर निकल जाएगी।
1: जस्ट चिल मिर्जिया, मेरे वीर दा हले करो ही नहीं निकले, उते कार बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुनदे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो बाकी सब कुछ फुला देवे।

0: चिंता ना कर साहबा, मिर्जी दी बकी हवावा नु चीर दे होया पलांच तेरे वीरा तो कोहां दूर निकल जाएगी।
1: जस्ट चिल मिर्जिया, मेरे वीर तो हले घरों ही नहीं निकले, उते कार बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुनदे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो बाकी सब कुछ फुला देवे।
3: एफएमएनएक्स 2.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल।

एक प्यार का नगमा है इत्थे खत्म हुंदा है। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर का यह रेनबो केंद्र है, यह रेनबो चैनल है। ठीक रात के 11 बज गए ने, साड़ी अज की सभा के सारे प्रोग्राम इत्थे समाप्त होंदे ने। मैनू दे इजाज़त, सवेरे मिलांगे नवे दोस्तां दे नाल। शब्बा खैर, जय हिंद।